मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फिरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदीदा चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ FM गोल्ड पर। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा भोर सुहानी की। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 5:38 और 54 सेकेंड। दोस्तों कहते हैं कि मोहब्बत सिर्फ दो दिलों के बीच का रिश्ता नहीं होती, मोहब्बत अपने काम से अपने परिवार

स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 5:38:54। दोस्तों कहते हैं कि मोहब्बत सिर्फ दो दिलों के बीच का रिश्ता नहीं होती, मोहब्बत अपने काम से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपनी जिम्मेदारियों से और सबसे बढ़कर जिंदगी से भी होती है। जब दिल में नेकी और अपनापन हो तो हर रिश्ता खूबसूरत बनता है और हर दिन एक नई रौनक लेकर आता है। इन्हीं खूबसूरत जज्बातों से सजा ये अगला नगमा, बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस गीत को अपनी बहुत ही शानदार आवाज़ से यादगार बनाया है किशोर कुमार साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब और शैलेंद्र सिंह ने। इन तीनों महान गायकों की ऊर्जा ने और इस अंदाज ने इस गीत को एक अलग रंग दिया है, एक अलग ताजगी बख्शी है। तो आइए इस खुशनुमा सुबह की शुरुआत मुस्कुराहट, सकारात्मक सोच और दिल में मोहब्बत के इस एहसास के साथ करते हैं। कहते हैं हर दिन किसी एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कीजिए, हो सकता है आपका एक अच्छा लफ्ज़, एक छोटी सी मदद या एक सच्ची दुआ किसी की पूरी सुबह खूबसूरत बना दे, पूरा दिन खूबसूरत बना दे। मोहब्बत बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है, और इसलिए अपने अल्फाज में मिठास रखिए, अपने व्यवहार में अपनापन और अपने दिल में उम्मीद। इसी उम्मीद के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं इस बेहद खूबसूरत परवरिश फिल्म के नगमे के साथ।

0: मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं 101.9 एफएम रेनबो। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन। आज का टॉपिक शायद आपने सोशल मीडिया में सुना ही होगा। अगर आप सुना है तो शायद आपने उसका मतलब भी अज्यूम कर लिया ही होगा। ऐसे मैं अज्यूम कर रही हूँ, पर आप बताना ज़रूर। एक फ्रेज़ हर जगह दिखता जा रहा है, सुनता जा रहा है, दैट्स लिटरली द बेयर मिनिमम। वेल, जैसे कोई टाइम पर पहुंच जाए, बेयर मिनिमम। कोई अपना काम ठीक से कर रहा है, बेयर मिनिमम। कोई पानी पी रहा है, 8 घंटे सो रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है, बेयर मिनिमम। इस जनरेशन ने इस फ्रेज को इतना पॉपुलर कर दिया है कि अब लग रहा है दुनिया की हर चीज़ या तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है या तो बेयर मिनिमम। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, और हम सब बेयर मिनिमम शब्द को तो यूज़ करते ही है, पर हम ये जानते हैं, समझते हैं इसका मतलब क्या है? वेल, और सबसे बड़े सवाल ये है कि अगर बेयर मिनिमम इतना ऑर्डिनरी है, तो फिर साइंस, साइकोलॉजी और हम ह्यूमन सर्वाइवल में इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल बनता है? चलो, मैं ये आपको ज़रूर बताऊँगी एक कमर्शियल ब्रेक और एक गाने के बाद। You're listening to 101.9 FM Rainbow at Skylar's Real Life.

0: 4 లక్షల కోట్లకు పైగా ఏయుఎం నిర్వహణ, పాన్ ఇండియా ఉనికితో దీర్ఘకాలిక వృద్ధి, యూటీఐ పెన్షన్ ఫండ్ తో పదవి విరమణకు సిద్ధంగా ఉండండి. పెన్షన్ ఫండ్లు మరియు సెక్యూరిటీల్లోని అన్ని పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి.
1: आप जुड़े हैं 101.9 एफएम रेनबो पर मेरे साथ प्रिय बांधवी. सो हम बात कर रहे थे एक वो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो टॉपिक है हमारा बेयर मिनिमम, जो हमको बहुत सुनने मिल रहा है आजकल. बेयर मिनिमम के भी टाइप्स होते हैं जैसे मैंने बताया था इस गाने से पहले. सबसे पहला है फिजिकल बेयर मिनिमम, यानी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए, पानी, नींद, खाना, मूवमेंट. अगर ये चार चीज़ें कंटिन्यूसली इग्नोर किया जाए तो बॉडी प्रोटेस्ट करना शुरू कर देता है. और दूसरा है हमारा मेंटल बेयर मिनिमम. कभी ऐसा दिन आता है जब मोटिवेशन ज़ीरो होती है, लेकिन आप उठते हैं, ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं और दिन शुरू कर देते हैं. कभी कभी यही अचीवमेंट होता है. और तीसरा हमारा है प्रोडक्टिविटी बेयर मिनिमम. पूरा टू डू लिस्ट कंप्लीट कर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टास्क कंप्लीट हो गया तो दिन तो वेस्ट नहीं गया. यही है हमारा प्रोडक्टिविटी बेयर मिनिमम. और चौथा है लर्निंग बेयर मिनिमम. रोज़ एक चैप्टर नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, एक पेज पढ़ लिया, यही बात है. ब्रेन को सिग्नल मिलता रहेगा कि लर्निंग कंटिन्यू है. अब पर ये सवाल ये है कि आखिर ह्यूमन बीइंग्स को बेयर मिनिमम की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है? उसका जवाब लेकर लौटूंगी अगले म्यूजिकल ब्रेक के बाद. सुनते रहिएगा आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 एफएम.

0: वेल लिसनर्स, आप जुड़े हैं स्टेशन ऑफ द नेशन 101.9 एफएम रेनबो पर और टाइम ऑफ द स्टूडियो क्लॉक इज 11:27 एंड एट 11:30 AM वी हैव अ स्टम्प रिले फ्रॉम न्यू दिल्ली. प्लीज स्टे ट्यून एंड लिसन टू 101.9 एफएम रेनबो.
1: ईरानी चाय,
2: बन मस्का,
1: हैदराबादी बिरयानी,
2: टंगड़ी कबाब,
1: कुर्बानी का मीठा,
2: शहदूद मलाई.
1: Hyderabad is a grand buffet.
2: And every dish has a story waiting to be told.
1: Exactly. That's why Jashne Hyderabad is your afternoon treat.
2: From 2 to 3 PM every day on FM Rainbow 101.9.
1: It's not just food.
2: It's culture, history and flavor rolled into one.
1: Jashne Hyderabad.

वेलकम बैक लिसनर्स, यू आर ट्यून इन टू 101.9 एफएम रेनबो। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन। प्लीज स्टैंड बाय फॉर द न्यूज हेडलाइंस एट 12 एंड टिल देन एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक हैं। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद

0: शुरू किया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। डॉ. मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 3-day state visit to Seychelles this morning. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. In his departure statement, the Prime Minister said that Seychelles is a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. He said that this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared democratic values, respect for diversity and strong people-to-people ties. The Prime Minister said that he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. Mr. Modi said that during the visit, he will have the honour of becoming the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will launch cooperative-based taxi service, Bharat Taxi, in 14 major cities in Gujarat at the Mahatma Mandir in Gandhinagar today. Mr. Shah, who is on a 3-day visit to Gujarat, is also scheduled to launch several key initiatives and chair review meetings. Our correspondent reports that along with Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi, representatives from the cooperative sector and more than 4,000 drivers will participate in the program. U.S. Secretary of State Marco Rubio has praised Prime Minister Narendra Modi's leadership, saying India has made significant economic progress and is playing a bigger role on the global stage. In an interview with a news agency at the White House, Rubio said the Trump administration viewed India as one of the United States' closest strategic partners. He said Prime Minister Modi has led a country that is making strong economic gains and becoming an increasingly influential global power. Rubio also said the relationship between Prime Minister Modi and President Donald Trump is very close, adding that it is important for diplomacy. U.S. Vice President J.D. Vance has warned Iran

0: FM Rainbow 101.9.
1: A very warm good afternoon to all the listeners of 101.9 FM. You are tuned into Namaste Hello Adab, your perfect blend of Western hits and Bollywood beats with me, RJ Priya Bandhavi. You can also call me Pri. Well, now we were talking about the bare minimum. जैसे हमारे जनरेशन ने इस फ्रेज को इतना पॉपुलर कर दिया कि अब लगता है दुनिया में हर चीज़ या तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है या तो फिर बेयर मिनिमम. लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात हम कर रहे थे अपने बेयर मिनिमम के टाइप्स के बारे में. सबसे पहले फिज़िकल बेयर मिनिमम, यानी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए थोड़े बेसिक चीज़ें, पानी, नींद, खाना एंड मूवमेंट. दूसरा है हमारा मेंटल बेयर मिनिमम. कभी ऐसा दिन आता

जब मोटिवेशन जीरो है बट हम उठे चलते हैं, कभी कभी ये भी थोड़ा सा अचीवमेंट होता है। और हमारा तीसरा, प्रोडक्टिविटी बेयर मिनिमम, पूरा टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन एक टास्क हो गया, वेल दिन तो वेस्ट नहीं गया। और चौथा हमारा लर्निंग बेयर मिनिमम, रोज एक चैप्टर नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, एक पेज पढ़ लीजिए, बस यही काफ़ी है। ब्रेन को सिग्नल मिलता रहेगा कि लर्निंग एक कंटिन्यूटी प्रोसेस है। अब ये हम सवाल के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर ह्यूमन बीइंग्स को बेयर मिनिमम की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। उसका जवाब लेकर लौट आई हूँ मैं, प्रिया बांधवी, अपने इस सेगमेंट में। आपको जानकर हैरानी होगी कि ह्यूमन ब्रेन परफेक्शन के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ है, ह्यूमन ब्रेन सर्वाइवल के लिए डिज़ाइन हुआ है। इसलिए जब रिसोर्सेस कम होते हैं, ब्रेन ऑटोमेटिकली एनर्जी सेविंग मोड पे चला जाता है। साइकोलॉजी में एक टर्म भी है, कॉग्निटिव इकोनॉमी, मतलब ब्रेन हमेशा कम से कम एफर्ट में कम काम करने की कोशिश करता है। इसलिए शॉर्टकट्स पसंद आते हैं हमें, हैबिट्स पावरफुल होती है और इसीलिए रूटीन्स काम करती है। और इसलिए बेयर मिनिमम का कॉन्सेप्ट नेचुरली एग्जिस्ट करता है हमारे रूटीन में। मतलब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ आप लोगों को, फिटनेस एक्सपर्ट एक टर्म यूज़ करते हैं, मिनिमम इफेक्टिव डोज। मतलब किसी भी एक्टिविटी का वो सबसे छोटा अमाउंट जो मीनिंगफुल बेनिफिट क्रिएट करे। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च बताती है कि सिर्फ 10 मिनट के वॉक भी मूड इम्प्रूव कर सकती है, ट्राई कीजिए। और इसी बात पे एक ब्यूटीफुल गाना आपके लिए।

वेलकम बैक लिसनर्स, यू आर ट्यून इन टू 101.9 एफएम रेनबो। मेरे साथ प्रिय बांधवी, हम बात कर रहे थे बेर मिनिमम की, और एक टर्म बताया था मैंने, मिनिमम इफेक्टिव डोज। यानी रिसर्च बताती है कि सिर्फ 10 मिनट्स की वॉक मूड इम्प्रूव करती है, कुछ स्ट्रेचिंग भी स्टिफनेस रिड्यूस कर सकती है, और रीडिंग का एक पेज भी हैबिट कर लिया ना, हम जिंदगी शांत से बिता सकते हैं। यानी कभी कभी छोटा एफर्ट भी काफ़ी पावरफुल होता है, और यहाँ बेर मिनिमम एक सीक्रेट सुपर पावर बन जाता है। क्योंकि लोग सोचते हैं ना, आज पूरा वर्कआउट नहीं कर सकता तो कुछ भी नहीं करूँगा, आज 30 पेजेस नहीं पढ़ सकता तो बुक ही नहीं खोलूँगा। लेकिन सक्सेसफुल हैबिट्स का रूल यही है, डू लेस बट डोंट स्टॉप इट। एक पुशअप, एक पेज, एक ग्लास पानी, एक छोटा सा वॉक काफ़ी है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना इनसिग्निफिकेंट लग सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी का फाउंडेशन यही होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताऊँ आप सबको, लाइफ में ना दो तरह की बेर मिनिमम होती है, हेल्दी बेर मिनिमम और अनहेल्दी बेर मिनिमम। डिफरेंस समझते हैं इस गाने के बाद। सुनते रहिएगा आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 एफएम, रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन।

इसमें बनाए रखता है, लेकिन अच्छे दिनों में सिर्फ बेर मिनिमम पर सेटल मत हो जाइएगा, क्योंकि ग्रोथ कंफर्ट जोन के आगे मिलता है सक्सेस। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? बेर मिनिमम को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। एक दिन का एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ छोटा छोटा एफर्ट करने में आपके डायरेक्शन बदल सकता है। याद रखिए, ऑन बैड डेज रिस्पेक्ट द बेर मिनिमम, एंड ऑन गुड डेज गो बियॉन्ड इट। और ये जो फ्रेज है ना अपना बेर मिनिमम का, ये कोई नया इंटरनेट फ्रेज नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ना अपने पुराने जमाने से आता हुआ आ रहा है। बोलते हैं ना, जब इंसान पहली बार समाज बनाना शुरू किया होगा, तब उसने बड़ी प्रायोरिटी क्या थी? लग्जरी, सक्सेस, पैसा या पर्सनल ब्रांडिंग? बिल्कुल नहीं जी, सबसे पहला जरूरी था सर्वाइवल की, और सर्वाइवल के लिए चाहिए था कुछ बेसिक रिसोर्सेस, रोटी, कपड़ा, मकान। सुना है ना? यानी फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, यही ओरिजिनल बेर मिनिमम था। सुनते रहिएगा आकाशवाणी FM रेनबो 101.9।

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं 101.9 FM रेनबो, रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन। सो हैव यू नोटिस्ड इट लेटली, समथिंग ब्यूटिफुल इज हैपनिंग अराउंड अस। वी आर स्लोली, स्टबर्नली एंड ब्यूटिफुली मूविंग टूवर्ड्स अ मैसिव ग्रीन रेवोल्यूशन। वही पुरानी कूलनेस नए रंग में। रिमेंबर द टाइम्स व्हेन वी वर कैरिंग अ प्लास्टिक बैग वॉज कंसिडर्ड कन्वीनियंट। टूडे if you walk into the market with a stylish jute tote bag or a clean cloth bag on your

शोल्डर्स, कभी जूट बैग हो, कभी कॉटन टोट बैग हो, और कभी सेल्फ पेंटेड डीआईवाई बैग्स हो, कभी बैम्बू के प्रोडक्ट्स और कभी स्टील वाटर बॉटल। यही है ना रेवोल्यूशन। और सच कहूँ, ये सिर्फ ट्रेंड नहीं है, ये सोच वही है बट बदलाव नहीं है। आखिरकार बात सिर्फ एक चॉइस की है। हर रोज़ हम फैसला कर रहते हैं कि जो चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं हमारे देश को, उनकी जगह जिम्मेदार और सोच समझ कर थोड़ी चॉइसेस कर रखते हैं, और इस सफ़र को रास्ता दिखा रहे हैं हमारे एको एंटरप्रेन्योर्स, वो खामोश बदलाव के नायक जो किसी पॉलिसी या ऑर्डर का इंतज़ार नहीं करते हैं, बल्कि अपनी सोच, अपनी क्रिएटिविटी और अपने काम से खुद ही एक नई दुनिया बसा लेते हैं। बात करते हैं इनके बारे में ये गाने के बाद।

वेलकम बैक लिसनर्स, और हम बात कर रहे हैं हमारे इको एंटरप्रेन्योर्स की। ये वो यंग माइंड्स है जिनके पास बड़े दिल और बहुत सारी ग्रीन विजन्स है। हमें देखा है किसी आजकल के स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, डिज़ाइनर्स और साइंटिस्ट ने सस्टेनेबिलिटी का कोड क्रैक कर लिया है, वो भी बिना ब्यूटी कन्वीनियंस या अपने कल्चर पे कॉम्प्रोमाइज़ किए। इमेजिन करिए, आप ऐसा बुटीक में चला रहे हो जहाँ पूरे डेनिम का कपड़ा पहना है, डेनिम

बैग्स है और सस्टेनेबिलिटी का यही तो अंदाज है। उस पुराने डेनिम को रीस्टिच करके ट्रेंडी बैग्स, फंकी जैकेट्स या सुंदर सा बुक कवर्स बना दिया जाता है। इस बुटीक का हर एक पीस एक कहानी सुनाता है, कचरे से खूबसूरती तक। ये कहानी एक ऐसी फैशन है जो धरती का कोई बोझ नहीं बनता। और सिर्फ कपड़े ही नहीं लिजनर्स, आजकल के शहर में ऐसे रूफटॉप्स है जहाँ हाइड्रोफोनिक गार्डन्स ब्लूम कर रहे हैं, जहाँ बिना मिट्टी के बहुत कम ही पानी के फ्रेश हर्ब्स और ग्रीन्स उगाए जा रहा है। स्काईलाइन के सामने बने ये छोटे छोटे फार्म्स टेक पावर्ड है, पर नेचर की पूरी इज्जत करते हैं। ये छोटे छोटे वर्टिकल फॉरेस्ट इस बात का सबूत है कि स्पेस कभी कोई लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन तो सिर्फ हमारे माइंडसेट में होती है। चलो इस प्यारी सी वाइब को आगे बढ़ाते हैं, सुनेंगे।

करते हैं। ये छोटे छोटे वर्टिकल फॉरेस्ट इस बात का सबूत है कि स्पेस कभी कोई लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन तो सिर्फ हमारे माइंडसेट में होती है। चलो इस प्यारी सी वाइब को आगे बढ़ाते हैं, सुनेंगे ये गाना, लेकिन इस ब्रेक के तुरंत बाद मैं आपको बताती हूँ एक इंटरेस्टिंग और मज़ेदार किस्सा सुनाने वाला हूँ जो हम एक साथ ही सुनेंगे। ऐसी चीज़ है जो हमारे सबके घर में याद आती है।

वेलकम बैक लिसनर्स, यू आर ट्यून इन टू 101.9 FM रेनबो। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन, और हम बात कर रहे थे इको एंटरप्रेन्योर्स की। एंड आई वाज गोइंग टू शेयर अ क्रेजी इंसिडेंट दैट हैपेंड विद मी। मैंने ऑनलाइन एक कुर्ती मंगाई थी, जब पैकेज आया था तो मैं उसके कपड़े का टैग काट कर डस्टबिन में फेंकने वाली थी टू ट्राई ऑन। एंड मेरी नज़र गई एक लाइन पे, उस लाइन पे लिखा हुआ था डोंट थ्रो मी प्लांट में। तो सब सही है, ये जो नया ज़माने के ऑसम इको फ्रेंडली ब्रांड्स है, ये हमें प्लांटेबल सीड टैग्स दे रहे हैं। वो पेपर टैग का कोई मामूली कचरा नहीं है, उसके अंदर एक मैरीगोल्ड या टमाटर के सीड्स एम्बेडेड है। आपको बस उस टैग को खुद तोड़ के एक मिट्टी में डाल के उसे पानी डालना है, बस आपकी शॉपिंग की आदत से एक नया पौधा निकल आएगा। मतलब कंज्यूमरिज्म के ऊपर कंजर्वेशन का भी तड़का। कितना ब्रिलियंट आइडिया है ना, यही तो कमाल है इस इको एंटरप्रेन्योर्स का। वो हमारी बोरिंग डेली लाइफ के हैबिट्स को एक ग्रीन मूवमेंट में बदल देते हैं। लेट्स कीप दिस ऑर्गेनिक एंड हैप्पी वाइब गोइंग। सुनते हैं ये अगला गाना।

लिसनर्स, हम बात कर रहे थे इको एंटरप्रेन्योर्स की, एंड अब मैं ये बताने चाह रही हूँ, वही अपना समर सेवियर्स है जो मिट्टी से जुड़ी है, वही क्ले पॉट्स और टेराकोटा बॉटल्स की। यार बचपन में ना दादी नानी के घर या रेलवे स्टेशन पर वो मिट्टी के कुल्हाड़ वाली चाय तो याद ही होगी हम सबको। फिर बीच में ये प्लास्टिक और ग्लास ने सब जगह कब्जा कर लिया, लेकिन वक्त बदल चुका है। आजकल के बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में चले जाओ तो अपन वहाँ यंग जनरेशन स्टाइलिश क्ले वाटर बॉटल्स और टेराकोटा फ्लास्क कैरी करते हुए दिख जाएंगे। और ये सिर्फ दिखावा नहीं है, इसके पीछे प्योर साइंस है। क्ले नेचुरली एल्कलाइन होता है जो अपने पानी के पीएच लेवल को सही रखता है, और क्योंकि मिट्टी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये नेचुरल एवोपरेशन से पानी को फ्रिज जैसा ठंडा रखता है बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के। और जो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आती है पानी पीते वक्त, ओफो, उसका तो कोई कुछ मैच ही कर नहीं सकता। हम प्लास्टिक बॉटल्स को मिट्टी से रिप्लेस कर रहे हैं, इसे सुंदर बात और क्या ही हो सकती है बता। बिल्कुल सही सुन रहे हो दोस्तों, सस्टेनेबल होने का मतलब यही है कि आप सबको छोड़कर जंगल में रहने चले जाओ ये नहीं बोलूँगी, बट ये हमारी डेली लाइफ का छोटे छोटे स्टेप्स के बारे में है। जब आप एक प्लास्टिक बॉटल के जगह मिट्टी की बॉटल ले लेते हो तो आप प्लास्टिक की डिमांड पे काम करते हो और उसको कम करने में बहुत सारा मदद मिलता है। जब आप मार्केट अपना क्लॉथ बैग लेकर जाते हो, सुंदर, सुशील और अच्छा भी दिखता है, प्लास्टिक की थाली को समुंदर में से जाने से भी रोकता है। लेस प्लास्टिक यूसेज का सीधा मतलब यही है कि पोल्यूशन ऑफ कम करना और एक साफ सुथरी धरती को आगे बढ़ाना। और इसी एक बड़ा फायदा क्या है पता है आपको? जब आपको कोई टेराकोटा बॉटल या जूट बैग खरीदते हो तो आप किसी बहुत बड़ी विदेशी कंपनी को अमीर नहीं बना रहे हो, आप डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हो एक लोकल आर्टिजन को, एक कुम्हार को, एक यंग कॉलेज स्टूडेंट जो अपना स्टार्टअप चला रहा है। ये असली वोकल फॉर लोकल जो पोल्यूशन भी कम करता है और हमारे देश को भी आगे बढ़ाता है। चलो इसी के साथ सुनते हैं एक और गाना।

are tuned into the station of the nation 101.9 FM Rainbow. Rainbow ke saath hai Life Rangeen. Ab hai aapka favorite show Hello Rainbow Live Fun and Programs. Baatein honge do taraf along with ter sare dhun. Baat karenge, gaane gaayenge aur gungunayenge. Main aapko pehle number bata deti hoon, note kar lijiye. 0402323 0030 aur ek number hai 0402323 4821 aur ek number hai 0402970715. Is dauran aap hame WhatsApp pe bhi jud sakte hai, jo hamara number hai WhatsApp ka 0402323 4821. वैसे हम बात कर रहे थे MSME हीरोज़ का, जो उनका डे है, ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस डे. द लोकल शॉपकीपर्स, द होम बेकर्स एंड द स्टार्टअप्स, देयर इज अ मैसिव क्वालिटी दैट दे ऑल शेयर, प्योर अनफिल्टर्ड रेजिलियंस. वो सप्लाई चेन का कैओस बढ़ाती हुई कॉस्ट, हर रोज का स्ट्रेस झेलते हैं पर कभी क्विट नहीं करते. और हॉनेस्टली आज की हमारी यंगर जनरेशन को बिल्कुल इसी ग्रिथ की, इस जिगर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ये दुनिया में करियर की एंग्जाइटी और डेली बर्नआउट से निपटाना उनके लिए सबसे बड़ा हर्डल बन चुका है. तो चलिए डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं और अपने ओपन करते हैं फ़ोन लाइन्स. वॉट इज़ दैट वन एडवाइस यू वुड गिव टू योर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ योर्स? उन्हें स्ट्रेस से हैंडल करना सिखाना है या कोई करियर का कोई सीक्रेट बताना हो? एक लाइन में आप अपना सबसे बेस्ट एडवाइस शेयर कीजिए. नंबर तो मैंने बता दिया है, आपके कॉल के लिए राह देखूंगी. तब तक ये गाना आपके लिए.

0: वेलकम बैक लिसनर्स, यू आर ट्यून इनटू 101.9 एफएम रेनबो। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन, और हम बात कर रहे थे व्हाट इज दैट वन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू आवर नेक्स्ट जनरेशन, चाहे स्ट्रेस मैनेज करने के लिए हो या करियर के बारे में हो, जो एक सीख है जो आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को बताना चाहते। नंबर्स मैं फिर से बोल देती हूँ कॉल इन के, 0402323-0030, 0402323-4821, 0402970-4715। हमारे एक कॉलर जुड़ने के लिए रेडी है, सुनते हैं। हेलो
1: हेलो, गुड आफ्टरनून आदाब मैडम।
0: गुड आफ्टरनून सर। हेलो रेनबो, कैसे हैं आप?
1: जी,
0: कौन
1: मैं
0: है,
1: शेरखा बोल रहा हूँ तलाबकट्टा अमन नगर से, और सभी सुनने वाले भाई बहनों को, दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम आदाब है। अल्लाह से दुआ करता हूँ आपको और सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे।
0: जी सर, आप आज का टॉपिक सुने?
1: जी मैडम, हमारे न्यू जनरेशन को एक एडवाइस देना है ना?
0: हाँ जी
1: जी। देखिए मैडम, हम क्या बोल सकते हैं, बस बोलने कहने सुनने से ज्यादा उस पर हमको गौर फिक्र और अमल करने की जरूरत है। न्यू जनरेशन को यही एक मशवरा देना चाहूंगा कि बस जो बुराई है, जो भी जिंदगी के दो पहलू, एक अच्छाई और एक बुराई, तो हम क्या बुरा कर रहे हैं, हम क्या अच्छा कर रहे हैं, या हम खुद, हमको खुद को ही सोचना है, हमको खुद को ही देखना है। और जिंदगी हमको जो मिली है अनमोल तोहफा है, तो हमको पता है हम जब दुनिया में आते हैं, बचपना है, जवानी है, फिर बुढ़ापा है, यानी जिंदगी है तो मौत भी है, तो हमको इसको सामने रखते हुए सारे कर्म यानी सारे अमल करना चाहिए। बुराइयाँ जो भी है, सोशल मीडिया की बुराई जो है तो उसको छोड़ना चाहिए, उसमें जो अच्छाई है उसको चुनना चाहिए, मोबाइल फोन में जो बुराई है उसको छोड़ना चाहिए, जो अच्छाई है उसको चुनना चाहिए। हमारे पेरेंट्स हमसे क्या चाहते हैं, हमारे घर वालों को हमारी क्या ज़रूरत है, हमको उस पर फिक्र करना चाहिए, क्योंकि बचपना आता है, फिर जवानी आती है और फिर बुढ़ापे में चले जाता है इंसान। तो ये सोचना चाहिए कि हम हमेशा एक जैसे नहीं रहने वाले हैं, हमको जो वक्त मिला है ये अच्छे काम के लिए, हमारी दुनिया और आखिरत को कामयाब बनाने के लिए मिला है, तो हम अच्छा करें, बुराई को छोड़े, अच्छाई को अपनाएं, और को किसी भी मतलब कोई संगत का रंग बोलते हैं ना, संगत की रंगत, यानी बुरी सोबत ना हो, हमारे साथ कोई बुरा है तो उसको सुधारने की कोशिश करें। बस अपनी जिंदगी पे गौर व फिक्र करें, हमको जिंदगी मिली है, इसको हमको कैसे गुजारना है, टाइम पास नहीं करना है, यही। और बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सोचना चाहिए कि बस हम क्या है, हमारी जिंदगी किस लिए मिली है और हमको क्या अमल करना है।
0: जी धन्यवाद जी।
1: और मैडम एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट थी, लता मंगेशकर जी की आवाज में है,
0: जी बोलिए।
1: हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे सफर, मूवी से मैडम प्लीज।
0: ओके सर, मैं ट्राई करूंगी।
1: शुक्रिया आपका,
0: थैंक यू फॉर कॉलिंग। यस, जैसे हमारे सामने बोला था कि पेशेंस के साथ जिंदगी को बिताना चाहिए, और एक ही जिंदगी है, मस्ती भी करना चाहिए, सीखना भी चाहिए, यही तो है जिंदगी का असली राज। चलो इसी बात पे एक गाना आ रहा है, सुनिए एफएम रेनबो 101.9।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, यू आर ट्यून इन टू 101.9 FM रेनबो। और हमारे साथ कॉलर जुड़ने के लिए रेडी है, देखते हैं कौन है।
1: गुड आफ्टरनून मैडम।
0: गुड आफ्टरनून, हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात?
1: मैं महजबीन बात कर रही हूँ, पेशल बंडे से।
0: जी महजबीन जी, बोलिए।
1: कदर करना बच्चे और वक्त पे खाना खाना, ये दो चीज अगर ले लिए जिंदगी में तो हर काम अच्छा होता है।
0: सही बात।
1: और हमारे शेर खान भाई को सलाम है, उन्होंने बहुत दिनों से बोल रहे हैं वो गाना डाल दो ना, उन्होंने अभी ना है, जरा घर पे रहते बोर होते।

0: कौन सा वाला बोल रहे हैं?
1: अभी लता मंगेशकर का बोले ना,
0: हाँ
1: तू हुए ना
0: जी,
1: हमारे, लता मंगेशकर। अभी बात करें ना
0: हाँ जी, हाँ
1: सरखान
0: जी,
1: भाई। ओ ठीक है, ओके, थैंक
0: थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कॉल करने के लिए।
1: यू।
0: जी मैडम का ये कहना है, टाइम पे खाइए, टाइम पे सोइए, बस यही है ज़िंदगी का राज, और उनका एडवाइस। दूसरे कॉलर है हम जुड़ने के लिए, कॉल कर रहे हैं, देखते हैं कौन है। हेलो रिंकू, हेलो रेनबो,
2: हाँ जी, हाँ
0: क्षमा चाहती हूँ, कॉल कट हो गया, फिर से कृपया ट्राई करिएगा। इसी गाने पे, इसी नाम पे एक और गाना आपके लिए है, कभी कभी मेरे दिल में, लता मंगेशकर जी का।

0: బ్రో ఆకలేస్తుంది బిర్యానీ తిందామా
1: ఏ ఎప్పుడు బిర్యానీ ఏం తింటాం పద హలీం తిందాం
0: తిందాంలే గాని హలీం అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసా
1: హలీం ఎక్కడి నుంచి రావడం ఏంటి మన హైదరాబాదే కదా
0: కాదు హలీం ఒక పర్షియన్ డిష్ నుండి ఎన్నో మార్పులతో ఇక్కడికి వచ్చి ఎంత పాపులర్ అయింది
1: ఓ అవునా
0: ఇంకా దాంట్లో చాలా న్యూట్రిషియస్ వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి
1: సరే కానీ అసలు ఇవన్నీ నీకు ఎలా తెలుసు
0: జష్నే హైదరాబాద్ జష్నే హైదరాబాద్
1: జష్నే హైదరాబాదా అదేంటి కొత్తగా
0: ఒక్క హలీమే కాదు ఇలాంటి మరెన్నో డిషెస్ గురించి మనందరికి చెప్పడానికి వచ్చేసింది
2: జష్నే హైదరాబాద్
0: ఎట్ 2 PM ఓన్లీ ఆన్ FM రెయిన్బో 101.9.
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 101.9 FM रेनबो रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन हमने अपने कॉलर से बहुत सारी बातें सुनी है जो एडवाइस जो हम उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन को दी है क्षमा चाहती हूँ अगर आपका कॉल नहीं जुड़ पाए बट अगले बार ज़रूर ट्राई करेंगे नेटवर्क के कारण हो सकता है और हम बात कर रहे थे क्या कमाल के फ़ोन इन और कॉल इन मैसेजेस आए हैं आज कॉलर आफ्टर द कॉलर लाइन आफ्टर द लाइन आप सब ने जो बातें बोली हैं ना उन्होंने मेरा दिल जीत लिया ज़रूर ये यंगर जनरेशन का भी इट्स सो ब्यूटिफुल टू सी हाउ कनेक्टेड वी ऑल व्हेन इट कम्स टू गाइडिंग आर नेक्स्ट जनरेशन वैसे अगर आप पूरे आज का शो के ध्यान से सुनो तो एक बात तो पूरा प्यारा सा लूप बनता है हमने सुबह सुबह शुरू की थी हेलेन केलर और उस अनब्रेकेबल स्पिरिट से जिन्होंने सिखाया कि लिमिट सिर्फ आपके दिमाग में होती है फिर हमने बात करी थी MSME हीरोज़ के बारे में और उनका अनफिल्टर्ड रेजिलियंस की उसके बाद हमने डिकोड किया था कॉन्सेप्ट द बेयर मिनिमम का जहाँ हमने सीखा कि बैड डेज पर खुद को संभालना कैसा और गुड डेज पर आगे बढ़ना कैसा है और आखिर में हमने स्पॉटलाइट डाला है हमारे कमाल के इको एंटरप्रेन्योर्स के बारे में इन सारी बातों में इन सारी स्टोरीज में पता है क्या कॉमन है दोस्तों इट्स सिंपल गोल्डन रूल है स्मॉल एक्शंस रिपीटेड कंसिस्टेंटली आर ऑफन मोर पावरफुल देन द ओकेशनल ग्रैंड एफर्ट्स मतलब कंसिस्टेंसी इज द की पेशेंस इज द की ऑनेस्टी इज द की ज़िंदगी बदलने के लिए ना हम हर रोज़ किसी बहुत बड़े चमत्कार की ज़रूरत नहीं होती है एक छोटा सा एफर्ट करने में ही अच्छा है जैसे हमने आज सीखा ऑन बैड डेज रिस्पेक्ट द बेयर मिनिमम ऑन गुड डेज गो बियॉन्ड इट और जब आपका कौन साइंस आपकी क्रिएटिविटी से मिल जाता है ना तो प्रोग्रेस सिर्फ एक गोल नहीं रहता इट बिकम्स द ब्यूटिफुल वे ऑफ लाइफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ अपने सैटरडे मॉर्निंग को इतना ऑर्गेनिक और इतना जेन्यून और इतना इंस्पायरिंग बनाने के लिए हंसते रहिएगा मुस्कुराते रहिएगा लोकल बिजनेस को सपोर्ट करते कीजिए और अपने पास की दुनिया को थोड़ा और

0: ग्रीन बनाए रखिए। दिस इज प्रिया बांधवी साइनिंग ऑफ। मैं तो चली बट आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट शो जश्न हैदराबाद आ चुका है और हमारे वेणु जी आ गए हैं हमारे स्टूडियो पे। ओवर टू यू।
1: हे वेरी हंग्री, व्हाट स्पेशल टुडे?
2: बिरयानी, कबाब्स, हलीम, बट वेट, दिस मोर।
1: More than food, it's the stories behind the recipes, the history of the kitchens and the flavors that shaped our city. And where do we taste all these?
2: On Jashne Hyderabad, every afternoon at 2 o'clock on FM Rainbow 101.9.
1: From Charminar's Irani Chai to the evolution of Hyderabadi Biryani, it's a feast for your ears.
3: Jashne Hyderabad, savor the city's soul.

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। दोस्तों आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग में भुलाए नहीं भूलते के तहत पुराने फिल्म गीत। आइए दोस्तों, वक्त की गिर्द बहुत कुछ ढांप लेती है मगर कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो दिल के दरीचों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। बरसों गुजर जाएं, मौसम बदल जाएं, ज़िंदगी नई राहों पर चल पड़े, लेकिन इन गीतों की खुशबू यादों के आंगन में महकती रहती है। आज की इस खुशगवार और हसीन महफिल में हम ऐसे ही लाजवाल फिल्मी नगमों को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं जिन्हें वक्त की धूल भी मांद न कर सकी। ये वो नगमे हैं दोस्तों जो कभी मोहब्बत की दास्तान सुनाते हैं तो कभी जुदाई का दर्द, कभी ज़िंदगी की उम्मीद और कभी बीते लम्हों के हसीन यादें। तो आइए दिल की मायूसी की खुशगवार फ़जाओं में चलते हैं जहाँ पर हर शर एक याद है।

है और हर बोल एक एहसास और हर नगमा एक अनमोल खजाना। आइए फिल्मी गीतों के सिलसिले को जारी रखते हुए सुनते हैं मेरा सनम से लिया गया ये गीत।

दोस्तों, उर्दू प्रोग्राम नए रंग में भुलाए नहीं भूलते के तहत पुराने फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं। अगला गीत हमने लिया है मिस्टर एंड मिसेस 55 से। पुराने फिल्मी गीतों की दुनिया में कुछ नगमे दोस्तों ऐसे भी हैं जो अपनी शौकी मासूमियत और दिलकश अंदाज की वजह से हमेशा जिंदा रहते हैं। इनके बोल होंठों पर मुस्कुराहट लेते हैं और धुन कदमों को बेख्तियार थरकने पर मजबूर कर देती है। अब पेशे खिदमत है दोस्तों, ऐसा ही एक चंचल जिंदा दिल और यादगार नगमा जिसमें मोहब्बत की शरारत भी है, हल्की सी शौकी भी और दिल को छू लेने वाली मौसिकी भी। इस गीत ने अपनी मुनफरिद अदा और दिलकश पेशकश से बरसों मौसिकी के शायकीन के दिलों में खास मुकाम बना रखा है। तो आइए माजी के सुनहरे दौर की इसी खुशगवार फ़ज़ा में चलते हैं और सुनते हैं मकबूल फिल्मी नगमा।

दोस्तों, फिल्मी गीतों का सिलसिला जारी है भुलाए नहीं भूलते के तहत। अगला गीत नीलकमल से हमने लिया है। जिंदगी की असल खूबसूरती दोस्तों मोहब्बत, वफा और ईसार में पोशीदा है। जब इंसान अपने वजद को किसी की खुशी, किसी की मोहब्बत और किसी के एतमाद के लिए वक्फ कर देता है, तब जिंदगी अपने हकीकी माना पा लेती है। यही एहसास बस फिल्मी नगमों को महज गीत नहीं बल्कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बना देता है। अब पेश है दोस्तों ऐसा ही एक लाजवाल और दिल में उतर जाने वाला नगमा, जिसकी बोल मोहब्बत की पाकीज़गी, वफादारी और बेलौस जज्बों की खूबसूरत तर्जमानी करते हैं। इस गीत के सहरंगेज़ धुन और दिलनशीन आवाज़ आज भी सुनने वालों के दिलों को इसी तरह मसूर कर देती है जैसे अपने अहद जर्री में किया करती थी। आइए मोहब्बत की इन्हीं लाजवाल जज्बों को महसूस करते हुए सुनते हैं ये शाहकार फिल्मी गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। नैरंग प्रोग्राम में भुलाए नहीं भूलते के तहत पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपको सुनवाया जा रहा है। आइए दोस्तों, फिल्मी गीतों के इस सिलसिले में अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे फिल्म गाइड से। जो गीत आप सुन रहे हैं दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जब मायूसी के बादल छट जाते हैं, दिल के दरीचे फिर से खुलने लगते हैं और इंसान नए हौसलों, नई उम्मीदों और नए ख्वाबों के साथ आगे बढ़ने का अज़्म करता है। ऐसे ही जज्बात की खूबसूरत अक्कासी करता है ये लाजवाल फिल्मी नगमा। ये गीत आज़ादी फ़िक्र, खुद एतमादी और ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जीने के जज्बे की तर्जुमानी करता है। उसकी दिलकश धुन, पुरअसर शायरी और मशहूर कुन आवाज़ आज भी सुनने वालों के दिलों पर ताजगी और उम्मीद की एक नई लहर दौड़ा देती है। तो आइए माजी के सुनहरी दौर के शाहकार नगमे के साथ ज़िंदगी को एक बार फिर मुस्कुराते हुए गले लगाते हैं।

साथियों, चांदनी रात, नर्म कुनख हवाएं, खामोश फजाएं और दिल में जागते मोहब्बत के हसीन जज्बात, जब ये सब एक साथ मिल जाए तो मौसीकी एक जादू बन जाती है। पुराने फिल्मी नगमों में इसी जादू को लफ्ज़ों और सुरों की सूरत में कैद कर दिया गया है। अब पेश खिदमत एक ऐसा ही रोमांच से भरपूर, दिलकश और हमेशा जवान रहने वाला नगमा, जो सुनने वालों को ख्वाबों की एक हसीन दुनिया में ले जाता है। इसकी मुतरन्नम धुन, दिल को छू लेने वाले बोल और सहरंगेज आवाज आज भी इसी तरह दिलों को मसहूर करती है जैसे बरसों पहले हुआ करती है। जी हाँ, कालाबाजार फिल्म का ये गीत था।

दोस्तों, फिल्मी गीतों के इस हसीन सफर में अब चलते हैं हम फिल्म चलते चलते से लिया गया इस गीत की तरफ। कुछ मुलाकातें ख़त्म हो जाती हैं दोस्तों, मगर उनकी यादें कभी ख़त्म नहीं होती। कुछ आवाज़ें खामोश हो जाती हैं, मगर उनकी गूंज दिल में हमेशा बाकी रहती है। मौसीकी भी ऐसा ही खूबसूरत रिश्ता है जो फासले मिटा देती है और यादों को हमेशा जिंदा रखती है। आज की इस महफिल के अख्तिताम पर पेश है एक ऐसा लाजवाब नगमा जो बिछड़ते लम्हों को भी मोहब्बत और अपनाइत का रंग देता है। ये गीत अलविदा नहीं बल्कि दोबारा मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं फिल्म चलते चलते का ये गीत।

दोस्तों अगला गीत सुनते हैं, फिल्म घर से लिया गया। दोस्तों इस अब जो नगमा हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये एक नहायत नफीस, रोमानंगेज और एहसास से भरपूर नगमा है, जिसमें महबूब की आंखों को महकते हुए गुलाबों से

मोहब्बत के इन कुछ रंग लम्हों को महसूस करते हुए सुनते हैं ये लाजवाब शाहकार। आपकी आंखों में कुछ महकते हुए गुलाब हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं। समात फरमाइए और इस दिलनशीन नगमे के साथ मोहब्बत, नज़ाकत और मौसीकी के सुनहरे दौर की खुशबू को अपने दिल में बसाइए।

दोस्तों, बुलाए नहीं भूलते के तहत पुराने फिल्मी गीत अभी आप सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं पयाम शब ज़ैदी की ज़बानी।

0: यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। चंदी लम्हों में हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: मन की बात।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर

0: Lebanon signed a US brokered framework for Israeli withdrawal and restoring Lebanese state authority. In the FIFA World Cup, Panama will take on England in Group L match at East Rutherford in US tonight. In another Group A fixture, Croatia will face Ghana at Philadelphia in US. And that is the end of this news bulletin.
1: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से तो याद रखें रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

11 बजकर 12 मिनट हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत, आपके साथ मैं विकास। नमस्कार।

इस गीत को सुनकर ऐसा लगता है कि हम किसी न किसी पहाड़ी पर जा चुके हैं। ऐसा लगता है कि कोई ना कोई फोक सॉन्ग हमारे सामने जैसे अलग अलग रंगों में सामने आ रहा है। जैसे लगता है कि रफ़ी साहब दूर किसी पहाड़ी से अपनी आवाज़ हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रोग्राम जैसे कि मैंने बताया कि शुरू हो चुका है, गीत मेरे मनमीत और आपके साथ मैं विकास हूं। और फिल्म जो अभी आप तक पहुंची, यानी कि जो गीत था वो था प्यार का मौसम। इस फिल्म से 1969 की ये फिल्म थी, मजरू सुल्तानपुरी का ये गीत लिखा हुआ और रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ थी। अगला गीत पहुंचता है आप तक 1989 की फिल्म से, फिल्म का नाम है परिंदा और प्यारा सा गीत है आशा जी की आवाज़ में और साथ निभा रहे हैं उनका सुरेश वाडकर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

11:35 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हुए आप और प्रोग्राम चल रहा है गीत मेरे मनमीत। आपके साथ इस सफर में मैं विकास। पंचमदा की कंपोजिशंस आप तक पहुंच रही हैं और जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे और पंचमदा की कंपोजिशंस का सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा देखा जाए तो वो आशा जी को हुआ। हो सकता है वो इसलिए भी क्योंकि आशा जी उनके स्टाइल के लिए सही आवाज़ रहीं, लेकिन लता जी एक जगह पर कहती हैं कि पंचमदा ने उन्हें वो गाने दिए जो वो उनके लिए सही समझते थे। और उन्होंने एक जगह उनसे कहा कि जो गाने मैं आपको ध्यान में रखकर कंपोज करता हूँ वो गीत मैं कभी भी आशा जी को आगे भेजता नहीं, और वाइस वर्सा यानी ठीक इसका उल्टा, जब मैं आशा जी के लिए कंपोज करता हूँ तो वो गीत मैं आपको नहीं देता। और इस तरह लता जी के पास रहना बीती जाए और बीती ना बिताए जैसे गीत गए।

पंचम दा को वेस्टर्न म्यूज़िक का बहुत शौक था, उन्हें बहुत पसंद था ये संगीत और उन्होंने अपने संगीत में उसे भरपूर जगह दी, एक्सपेरिमेंट किया, कई देशों को जब जब घूमा, वहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स अपने साथ लाए और उन्हें अपने गानों में आजमाया भी। लेकिन तबला और सरोद बढ़िया तरीके से बजाने वाले आर.डी. बर्मन ने कई सारी शास्त्रीय धुनों को भी तैयार किया। अगर मैं कुछ गीतों की लिस्ट यहाँ शेयर करूँ, आपको बताऊँ, तो शायद समय निकल जाए, लेकिन फिर भी कुछ कुछ गीत मैं आपके लिए बता ही देता हूँ। जैसे मेरे नैना, सावन बाधो, राग शिवरंजनी, राग तोड़ी का रहना बीती जाए और यमन कल्याण में बीती ना बिताई रहना। ये कुछ ऐसे गीत जो आज भी हम पसंद करते हैं, सुनते हैं और जब जब रेडियो पर या अपने घरों में हम इन्हें बजाते हैं तो हो ही नहीं सकता कि आप उन गानों को गुनगुनाना न शुरू कर दें। फिलहाल घड़ी बता रही है कि विकास, अब तुम्हारे स्टूडियो छोड़ने का वक्त आ चुका है, इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल, जो रखते हैं आपका ख्याल। विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS शिक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS शिक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इसके तहत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान आज फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इस पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। रक्षा मंत्री के भाषण का संदर्भ देते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उस समय मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने यह धारणा बना ली थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कई पायलटों की जान गई थी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये बातें पूरी तरह झूठी थीं और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को धूमिल करने के इरादे से प्रस्तुत की जा रही थीं। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आवाज की दुनिया के दोस्तों को रश्मि कुकरेती का नमस्कार। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और कार्यक्रम है पानी पर लिखी कहानी। आज इस कार्यक्रम में हम जो कहानी आपको सुनवाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है अंजलि और इसे लिखा है रश्मि रविजा ने। दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं होती। अंजलि बहुत कुछ करना चाहती है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि उसकी जिंदगी एक जगह स्थिर होकर रह जाती है। वहां होती है निराशा, वहां होता है गहन अंधकार, लेकिन उस अंधकार में हाथ थाम कर जो उजाले की ओर लेकर चलता है वो होता है सच्चा दोस्त। कुछ ऐसी ही रूपरेखा है इस कहानी की। आइए सुनते हैं पानी पर लिखी कहानी अंजलि।
1: साहिल दौड़ता भागता प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो पता चला ट्रेन 2 घंटे लेट है। ऑफिस से तो समय पर ही निकला था पर ट्रैफिक में बुरी तरह फंस गया। सोच रहा था पहली बार अंजलि ने उससे कोई मदद चाही है और वो समय पर नहीं पहुंच पाएगा। अजनबी शहर, अनजान चेहरों के बीच अंजलि परेशान हो जाएगी, ऐसा ना हो वो अकेले ही चल पड़े। पर आज मन ही मन भारतीय रेलवे का शुक्रिया भी अदा किया। आज ट्रेन के लेट होने से खींच नहीं हुई बल्कि सुकून की सांस ली उसने। एक नींबू पानी लिया और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। अच्छा हुआ थोड़ा समय मिला और बिखरी यादें अपने आप सिमटने लगी। अंजलि उसकी छोटी बहन साक्षी की सहेली थी। दोनों एक ही क्लास में थी और अक्सर साक्षी के साथ अंजलि भी घर पर आया जाया करती। साक्षी जब छोटी थी तो उससे बहुत डरती थी। अब तो दादी अम्मा बनकर सलाह दिया करती है। उसकी देखा देखी अंजलि भी उससे डरने लगी। वो घर में घुसता और दोनों सहेलियां या तो छत पर भाग जाती या घर के किसी महफूज कोने में छुप जाती, और अगर सामने पड़ जाती तो वो भी रौब जमाने के लिए जोर से साक्षी को किसी न किसी बात पर डांट देता। साक्षी सहम जाती और अंजलि जल्दी से अपने घर चली जाती। जब साहिल को पता चला कि गली के कोने पर जो बड़ा सा आलीशान मकान है वो अंजलि का घर है और वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, तो उसने साक्षी को समझाया।
2: सारा दिन खीखी करके घूमती रहती हो, इम्तिहान पास आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं करनी?
3: हाँ भैया।
2: इतने बड़े घर की लड़की से दोस्ती ना करो। अरे उन लोगों का रहन सहन, बात व्यवहार सब अलग होता है। दोस्ती बराबर वालों में ही अच्छी लगती है।
3: अंजलि बहुत अच्छी लड़की है भैया, घमंड तो जरा छू भी नहीं गया है। बहुत घुलमिल कर रहती है, बड़ों की बहुत इज्जत करती है। सब पैसे वाले खराब थोड़े ही होते हैं भैया।
2: जिससे चाहो दोस्ती रखो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अमीर सहेली की देखा देखी कोई ऊट पटांग मांग न कर बैठना।
3: ठीक है।

0: अब साक्षी उसके सामने कभी अंजलि को अपने घर पर नहीं बुलाती। काफी दिनों तक उसने अंजलि को देखा नहीं और वो भूल गया। साक्षी कॉलेज में आ गई थी। एक दिन कॉलेज में उसका साड़ी डे था। दो दिन से उसकी तैयारी चल रही थी और साहिल उसे चिढ़ाए जा रहा था।
1: ये कॉलेज जाने की तैयारी हो रही है या किसी फैशन परेड में? कॉलेज में पढ़ाई की जगह ये सब होता है? कमाल है, कैसा कॉलेज है तुम्हारा?
2: भैया परेशान मत करो।
0: माँ ने भी उसे डांट कर बाहर वाले कमरे में भेज दिया। जब तक ये तैयार होकर चली नहीं जाती मुझे कोई काम नहीं करने देगी। वो ड्राइंग रूम में टेबल पर पैर फैलाए टीवी देखने लगा। तभी डोरबेल बजी। सामने एक परी सी खूबसूरत लड़की नीली साड़ी में खड़ी थी। वो बिना पलके झपकाए देखता रह गया तो धीरे से बोली,
3: साक्षी है?
1: साक्षी।
0: और दरवाजा खुला छोड़ अंदर चला गया पर बरामदे से देखता रहा।
1: ये कौन सी सहेली है साक्षी की? इसे तो कभी नहीं देखा।
0: साक्षी साड़ी संभालती हुई कमरे में आई और चीख पड़ी,
2: अंजलि हाय, तो कितनी सुंदर लग रही है।
1: तो ये अंजलि थी, पर इतनी बदल कैसे गई? वो तो दो पोनीटेल बांधे फ्रॉक पहने रहती थी, इतनी बड़ी कैसे हो गई?
0: दोनों सहेलियां घर से निकल गईं और वो खिड़की के पास आ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये अंजलि ही थी। दूर तक उसे जाते देखता रहा। बाद में साक्षी से पूछ भी लिया,
1: वो अंजलि थी तुम्हारे साथ? तुम्हारी अंजलि से अभी दोस्ती है?
2: हाँ, लो, हमारी दोस्ती खत्म कब हुई थी? हम तो स्कूल से ही पक्की सहेलियां हैं।
1: ओह नहीं नहीं, वो कभी देखा नहीं ना घर पर।
2: वो तुमने डांट दिया था ना कि अमीर लड़कियों से दोस्ती मत करो, इसीलिए तुम जब घर पर होते हो तो मैं अंजलि को लाती ही नहीं। और वैसे भी तुम घर में रहते ही कितनी देर हो? कभी क्रिकेट, कभी दोस्त, कभी कॉलेज। पर मेरी सहेली के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? बताओ बताओ।
1: नहीं नहीं, अब मतलब वो तो यूं ही अब पहचाना नहीं ना इसलिए।
0: पर अब वो अक्सर साक्षी से अंजलि के बारे में पूछ लेता। साक्षी भी सहज होकर सब बता देती, कभी कभी उसके लिए सहायता भी मांग लेती।
2: अच्छा भैया, वो तुम्हारे किसी दोस्त के पास इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं क्या? अंजलि के लिए ला दो ना प्लीज।
1: ठीक है, मैं ला दूंगा।
0: या कभी कभी अमुक राइटर की कोई किताब लाने को कहती, वो कहीं से भी ढूंढ कर ला देता। धीरे धीरे साक्षी भी समझ गई थी अंजलि के लिए उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। पर जब अंजलि जब भी उसके सामने पड़ती घबरा कर चली जाती। उसके मन में शायद उसके बचपन वाली डांट का अब तक असर था। पर साक्षी बताती कि अंजलि भी उसके बारे में अक्सर पूछती रहती है।

0: उसे पता था अंजलि और उसका कोई मेल नहीं। जब पढ़ाई खत्म कर उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, तब साक्षी ने ही बात शुरू की।
1: भैया, अंजलि की शादी की बात चल रही है। तुम भी तो कितनी अच्छी जॉब में हो। अंजलि बहुत बहुत अच्छी लड़की है। कितना अच्छा हो अगर अंजलि हमारी भाभी बन जाए।
2: साक्षी, बहुत पटर पटर बोलने लगी है तो। ऐसा कुछ नहीं है, और मैं तो अभी 4-5 साल तक शादी की बात सोच भी नहीं सकता।
1: क्यों भला?
2: अरे, बहुत से काम निपटाने हैं। घर की मरम्मत करवानी है, रिनोवेट ही करवाऊंगा मैं तो पूरा। और हाँ, गाड़ी लेनी है। मम्मी पापा को पूरा देश घुमाना है, लोन चुकाना है, और सबसे बड़ी बात, तेरी शादी करनी है। अभी बहुत वक्त है साक्षी।
1: पर तब तक अंजलि के पेरेंट्स इंतजार थोड़े ही करेंगे।
2: इसीलिए तो कह रहा हूँ, फिजूल की बातें सोचना छोड़ते हैं। वैसे भी अंजलि को उसके स्टैंडर्ड का घर ही मिलना चाहिए।
1: भैया, अंजलि वैसी लड़की नहीं है, हर जगह एडजस्ट कर लेगी।
2: बेकार की बातें मत कर। अच्छा, चल जा, चाय बना के ला। चल।
1: क्या भैया?

0: अंजलि उसे अच्छी लगती थी। माँ और साक्षी से उसकी तारीफ भी सुनता रहता था। अब कॉलेज खत्म होने के बाद उसकी आवारागर्दी भी कम हो गई थी। वीकेंड्स पर अक्सर घर पर ही होता। अंजलि कभी रास्ते में मिल जाती, कभी छत पर से नजर आ जाती। साहिल को देखते ही अंजलि के चेहरे पर एक घबराहट सी छा जाती। उसके बालों की जड़ें पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों से लद जाती और लाल चेहरा लिए वो कतरा कर निकल जाती। वो कभी मुस्कुरा देता, कभी सोचने लगता।
1: इतना भी क्या घबराना, अरे इतने दिनों में भी उसने मुझे नहीं पहचाना, क्या अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं हुआ उसे? ठीक है।
0: एक बार उसने उसे थोड़ा और परेशान करने के लिए पूछ भी लिया।
1: अब वो नोट्स साक्षी ने दिए थे, ठीक थे ना?
2: हाँ अच्छे थे।
1: ठीक है। और वो मैं ये कह रहा था कि कभी भी कोई किताब चाहिए तो बताने में संकोच नहीं करना।
2: जी जरूर।
0: फिर उसने खुद को ही रोक लिया। क्या फायदा जिस राह की कोई मंजिल नहीं, उस पर भला क्यों कदम बढ़ाना।

उसने मन ही मन एक दुआ कर डाली कि अंजलि को खूब अच्छा घर और बर मिले, उसे जीवन की सारी खुशियां मिले। कुछ महीनों बाद सुना कि अंजलि की शादी तय हो गई है। उसके कुछ दिन बाद एक दिन वो घर की तरफ आ रहा था और अंजलि उसी रास्ते से गुजर रही थी। अंजलि ने नजरें उठाकर बहुत गुस्से में उसे देखा। वो उन नजरों का मतलब देर तक तलाशता रह गया। अंजलि नाराज है उससे, पर उसने तो हमेशा उसकी मदद ही की है। फिर उन नाराज निगाहों का माजरा क्या था, उसे समझ नहीं आया। अंजलि की शादी के दिन नजदीक आते जा रहे थे। साक्षी की तैयारियां जोरों पर थी। बस एक ही विषय था उसके पास, कब क्या पहनेगी। जब दो दिन रह गए तो उसका मन डूबने लगा और वो ऑफिस के काम का बहाना बनाकर शहर से बाहर चला गया। अंजलि की विदाई के बाद ही लौटा। अंजलि का घर वैसा ही था, पर सूना सूना लग रहा था। छत पर से देखा, अंजलि की छत पर बने मंडप की सजावट धूप में फीकी पड़ गई थी। छत पर अक्सर अंजलि के रंग बिरंगे कपड़े और दुपट्टे वगैरह सूखते रहते थे। आज छत वीरान लग रहा था, उसके मन के एक कोने जैसा। साक्षी से अंजलि की शादी की बातें, उसके दूल्हे की हाजिर जवाबी के किस्से सुनता रहा। मन में एक टीस तो उठती, पर वो मन को समझा देता। यही दुआ तो की थी अंजलि के लिए कि वो हमेशा खुश रहे।

0: दो साल बाद साक्षी की भी शादी हो गई। साक्षी की शादी में अंजलि अपने एक साल के बेटे के साथ शामिल हुई थी। अब उसे नौकरी करते हुए कई साल हो गए थे। उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली थीं। पुराने घर की ऐसी काया पलट कर दी थी कि लोग पहचान नहीं पाते। माँ पापा साक्षी कब से उसके पीछे पड़े थे, शादी कर लो, शादी कर लो। रोज ही माँ कोई न कोई तस्वीर दिखाती और उस लड़की के गुण गाती तो वो बहाने बनाकर टाल देता। पर अब कोई बहाना भी शेष नहीं बचा था। उसने भी हाँ कहने की सोच ही ली थी कि साक्षी के एक फोन ने जैसे उसे सुन्न सा कर दिया। रोती हुई साक्षी कह रही थी,
1: भैया जानते हो अंजलि के साथ क्या हुआ?
2: क्या हुआ?
1: उसके हस्बैंड।
2: क्या हुआ उसके हस्बैंड को?
1: He's no more.
2: Oh no.
1: हाँ भैया, अंजलि तो पत्थर हो गई है। आंसू भी नहीं बहते उसके, सारा दिन छत घूरती रहती है।
2: मुझे लगता है एक बार मुझे जाना चाहिए। अंजलि के माता पिता जब भी मिलते हैं मेरा हाल चाल जरूर पूछते हैं। उनके इस दुख के समय में मुझे उनसे मिलना ही चाहिए।
1: बिल्कुल जाना चाहिए, कल ही चलना तुम मेरे साथ।
0: अंजलि और उसके बेटे का चेहरा बार बार सामने नजर आ जाता। कैसे सह पाएगी अंजलि ये पहाड़ सा दुख? माँ को जैसी ही खबर मिली वे अंजलि के घर चली गईं। अंजलि को उसके माता पिता अपने पास लेकर आए थे। साक्षी भी अपनी सहेली का दुख बांटने आ गई थी। सुबह होते ही अंजलि के घर चली जाती, रोज रात में रुंधे स्वर में अंजलि की दशा का वर्णन करती। ये सब सुनकर उसका कलेजा टूक टूक हो जाता। एक नजर अंजलि को देखने की उत्कट इच्छा जाग जाती। उसे पता था वो कुछ कह नहीं पाएगा, पर दो पल उसके साथ बैठेगा तो सही। अंजलि को इतना तो जता दे कि उसके दुख से वो भी कितना दुखी है। दूसरे दिन साक्षी के साथ अंजलि के घर गया, जी कड़ा कर गेट के अंदर प्रवेश किया। अंजलि की माँ बाहर वाले कमरे में ही अंजलि के 3 साल के बेटे को गोद में लेकर बैठी थी। साक्षी अंदर चली गई, वो अंजलि की माँ के पास बैठा रहा। थोड़ी देर बाद अंजलि की माँ उठी ये जानने के लिए कि अंजलि ने कुछ खाया है या नहीं। साक्षी का बड़ा सहारा है, अनय और अंजलि को बहुत संभाला है उसने। तुम भी आओ बेटा, कहती हुई उसे अंदर बुलाकर ले गई। अंजलि एक कुर्सी पर निस्पंद बैठी थी। साक्षी पलंग पर अनय को एक पिक्चर बुक दिखा रही थी। अंजलि ने आंखें उठाकर उसे देखा और थोड़ी देर देखती ही रही। पत्थर सी आंखें थी उसकी, उनमें कोई भाव नहीं था, जैसे एक वीरानी सी ठहर गई हो। फिर खिड़की के बाहर नजरें टिका दी अंजलि ने। अंजलि की माँ ने साक्षी से पूछा, अंजलि ने खाया कुछ? खाया क्या, छुआ भर है। अंजलि की माँ ने ही दूसरी कुर्सी खींचकर उसे बैठने के लिए कहा। साहिल अपनी हथेलियों को घूरते हुए जड़ बना बैठा रहा, कुछ भी बोल नहीं पाया। अंजलि खिड़की से बाहर देखती रही। अनय ही उसे शांत बैठा देख अपनी किताब उसके पास लेकर आ गया। वो बाहर निकल आया और एक संकल्प लिया, इन वीरान आंखों में नए सपने उगा कर रहूंगा। कुछ दिनों बाद साक्षी भी चली गई, पर वो सुबह शाम अंजलि को फोन करती और उसे भी अंजलि का हाल चाल पता चलता रहता। साहिल ने साक्षी से ही अंजलि को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा, पर साक्षी का कहना था अंजलि बिल्कुल तैयार नहीं है। आखिर एक दिन अंजलि से वो मिलने गया।
2: अंजलि तुम एमए कर लो, देखो घर से बाहर निकलोगी तो दिल भी बहलेगा।
3: नहीं, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगेगा और पापा भी कहते हैं अभी रहने दो।
2: अरे लेकिन अगले महीने सेशन शुरू होने वाले हैं, अभी एडमिशन नहीं लिया तो फिर पूरा 1 साल रुकना पड़ेगा। जरा सोचो अंजलि।

0: तब तक क्या करोगी? ऐसे ही दुख में डूबी रहोगी?
1: तुम मेरी बात नहीं मानोगे।
2: देखो साहिल, आगे पढ़ने में मेरी कोई रुचि नहीं है। मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है। इतना है मेरे पास कि आने के भविष्य के लिए सोचना नहीं पड़ेगा।
0: नौकरी के लिए कह कौन रहा है? अरे वो तो बाद की बात है, अभी एडमिशन तो ले लो। अच्छा फिर भले तुम यूनिवर्सिटी मत जाना।
2: मुझे कहीं नहीं जाना, नहीं पढ़ना।
0: फिर क्या करोगी? यूं ही उदास बैठी रहोगी? अरे तुम अनहे की तरफ देखो, तुम्हें इस तरह उदास देखकर उसका बचपन कैसे गुजरेगा? उसे भी एक हंसती मुस्कुराती मम्मी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे तुम्हारी भी उसके प्रति कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? देखो बचपना छोड़ो, मैं एमए का एडमिशन फॉर्म लेकर आया हूं, तुम उसे भर दो और पढ़ाई शुरू करो। देखो तुम समझ नहीं रही हो, जैसे मैं साक्षी को डांट सकता हूं ना, वैसे तुम्हें भी। चलो चलो अभी फॉर्म भरो।
3: ठीक है। शायद अंजलि ने गुस्से में कुछ कहने के लिए सिर उठाया, पर साथ ही अपनी माँ को और उनकी साड़ी पकड़कर सहमे से अनय को देख चुप हो गई और फॉर्म भरने लगी। साहिल पता करता रहता कि कब से क्लास शुरू होने वाले हैं, और जब क्लास शुरू हो गए तो उसने साक्षी को बुलवा लिया। शुरू में कुछ दिन साक्षी ही जबरदस्ती अंजलि को यूनिवर्सिटी लेकर गई। अंजलि सिर्फ पढ़ाई शुरू करने में आनाकानी कर रही थी, एक बार पढ़ना शुरू किया तो फिर उसमें ही रम गई, पर उससे वैसी ही दूरी बनी रही। एक आध बार अंजलि के घर गया भी और पूछा,
0: अंजलि पढ़ाई ठीक चल रही है ना? देखो कोई जरूरत हो तो जरूर बताना।
2: हाँ हाँ ठीक चल रही है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी।
0: कैसी हो?
2: मैं ठीक हूँ, आने चलो देर हो रही है।

0: मन।
1: अंजलि ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया था और उसकी मेहनत रंग लाई। उसने फर्स्ट क्लास से MA पास किया और फिर PhD करने लगी।

0: ये सब देख बहुत खुशी होती। उसने जो राह दिखाई उस पर अंजलि आगे ही बढ़ती जा रही थी। माँ अब भी अक्सर साहिल पर शादी के लिए जोर डालती, पर अब अंजलि को यूं अकेला देख उसे अपनी दुनिया बसाने की इच्छा नहीं होती। साक्षी समझती थी, अब वो कुछ नहीं कहती। इस बीच साहिल को दूसरे शहर में एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी और उसे दूर जाना पड़ा। अनय के स्कूल की छुट्टियां चल रही थीं और अंजलि उसे लेकर ससुराल गई हुई थी। मन में एक कसक तो रहती कि आते वक्त अंजलि को एक नजर भी नहीं देख पाया, मिल पाता या नहीं, कुछ कह पाता या नहीं, या तो किसी बहाने से एक नजर तो देख लेता। अंजलि की मनःस्थिति समझता था, इसलिए वो कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहता था। साक्षी के जरिए अंजलि की खबर मिलती रहती थी। अंजलि की पीएचडी पूरी हो गई और अब एक कॉलेज में एडहॉक लेक्चरर के रूप में उसकी नियुक्ति हो गई। कभी अपने शहर जाता और अंजलि पर नजर पड़ जाती तो उसे आत्मविश्वास से भरपूर देखकर अच्छा लगता, हालचाल पूछ लेता। अब अंजलि की आंखों में उतना गुस्सा नहीं नजर आता, फिर भी वो ज्यादा बात नहीं करती थी, छोटा सा जवाब देकर आगे बढ़ जाती। पर इतना सा बदलाव भी उसे भला लगता। वो अंजलि को भरपूर समय देना चाहता था। उसे अपने दिल की बात कहने की कोई जल्दी नहीं थी। वो पहले अंजलि को अपने दुख से उबरने देना चाहता था, उसे अपने पैरों पर खड़े देखना चाहता था, ताकि अंजलि को ये न लगे कि वो उसे कोई सहारा देने के उद्देश्य से ये सब कर रहा है। और फिर जैसे एक राह मिल गई, साक्षी का फोन आया।
1: भैया।
2: हाँ?
1: तुम्हारे शहर के कॉलेज में ही एक सेमिनार है जिसमें अंजलि को भाग लेना है।
2: ओह।
1: हाँ, और ठहरने का सारा इंतजाम कॉलेज में ही है, पर वहाँ ट्रेन शाम को पहुँचती है, नया शहर है और अंजलि ने कभी अकेले सफर भी तो नहीं किया, वो थोड़ा डर रही है। तुम उसे स्टेशन से लेकर कॉलेज तक पहुँचा देना प्लीज।
2: वो तो मैं पहुँचा दूंगा, लेकिन क्या ये सब अंजलि ने तुम्हें कहा मुझे इन्फॉर्म करने के लिए?
1: हाँ हाँ भैया, अंजलि ने ही फोन पर मुझे कहा है कि तुम्हें बता दूं।
2: ओह, तब तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा।
1: वो तो मुझे मालूम है भैया।
0: उसे रात भर नींद नहीं आई, ऑफिस में भी जैसे तैसे काम निपटाया और अब स्टेशन पर था। क्या पता अंजलि कैसे बात करेगी, अब तक अजनबी जैसे ही थे दोनों। पर एक तसल्ली थी, जब खुद ही साक्षी से कहा है तो वो रूखेपन से तो बात नहीं करेगी। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, ट्रेन पास आती जा रही थी और उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। ट्रेन रुकी, वो कोच के सामने ही खड़ा था। अंजलि गेट पर ही बैग थामे खड़ी थी, उसे देखते ही मुस्कुरा दी और इस मुस्कुराहट ने अजनबीपन की पहली दीवार गिरा दी।
2: वेलकम वेलकम, बैग उठा लूं? अरे डर लग रहा है, कहीं तुम नाराज होकर ये ना कहो कि मैं तुम्हारी हेल्प।
3: साहिल, नाराज होना होता तो तुम्हें इन्फॉर्म करती।
2: तो चलें।
3: इसीलिए तो आई हूँ, बताओ कहाँ चलना है।

साहिल ने बैग हाथों में लिया। अंजलि सहज रूप से उसके साथ चल दी। अजनबी पन की दीवार गिर चुकी थी। दीवार के पार उसे दूर तक जाते एक खुशनुमा रास्ते पर दो जोड़ी पैर चलते नजर आ रहे थे। उनके बीच कोमल सा कुछ उग रहा था।

वक्त हुआ है 12:55 और ठीक 31 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। 1:10 पर गीत सुहाने मेरे यानी राखी के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंच गए। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता

0: उत्ता प्रकट की ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS शिक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS शिक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। रक्षा मंत्री के भाषण का संदर्भ देते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उस समय मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने यह धारणा बना ली थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कई पायलटों की जान गई थी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये बातें पूरी तरह झूठी थी और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को धूमिल करने के इरादे से प्रस्तुत की जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल चेतावनी दी कि जो कोचिंग सेंटर जरूरी सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें दिल्ली में काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक वीडियो मैसेज में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत रेगुलेटरी कानून लाएगी ताकि ज्यादा सख्त निगरानी, बेहतर जवाबदेही और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों को पूरा करने के लिए 1 महीने का समय दिया जा रहा है। दिल्ली में चल रहे सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे उनकी संख्या 900 हो या 1000, संख्या मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि वहां पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी और उनकी सुरक्षा कैसी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी तरह की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की जानकारी ईमेल, मैसेज या फोन के जरिए दे सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बात की और निर्देश दिया कि इस रैकेट में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये कदम भिवंडी पुलिस द्वारा TET परीक्षा से एक दिन पहले रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार करके एक बड़े पेपर लीक को नाकाम करने के बाद उठाया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी दिल्ली से TET प्रश्न पत्र लाए थे और कथित तौर पर उन्हें लगभग 1.5 करोड़ के सौदे में बेचने की तैयारी कर रहे थे। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria yesterday on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 57 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

डिटेक्टिव फिल्म का गाना आपने सुना हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया मुकुल रॉय ने। जब मन शांत हो, रात सुहानी हो या सफर लंबा हो, तब ये गीत दिल के सबसे करीब आ जाते हैं। इनकी सादगी, मधुर बोल और दिल को छू लेने वाले सुर आज भी उतने ही ताजा लगते हैं जितने बरसों पहले थे।

0: बारिश फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और चितालकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया चितालकर रामचंद्र ने। पुराने गीत सिर्फ धुने नहीं होते, वो यादों का एक खूबसूरत कारवां होते हैं। हर गीत अपने साथ किसी बीते पल की खुशबू, किसी मुस्कान की गर्माहट और किसी अनकही भावना की मिठास अपने साथ लेकर आता है।
1: चुपके से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम, क्या हो जो घटा खुल के बरसे रुम झुम रुम झुम।

मंजिल फिल्म का गाना आपने सुना रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसटी बर्मन ने। जिंदगी की भागदौड़ में जब मन कुछ पल सुकून तलाशता है तब यही मधुर नगमे हमारा हाथ थाम लेते हैं। इनकी हर पंक्ति हर सुर और हर एहसास दिल के किसी न किसी कोने को छू ही जाता है।

माया फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। बड़ा ही दिल को छू लेने वाला गीत था। इसकी हर पंक्ति में जज्बातों की गहराई थी और हर सुर में एक ऐसी मिठास जो सीधे दिल तक उतर गई। कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। ये भी उन्हीं गीतों में से था जिसने बीते हुए लम्हों को फिर से जिंदा कर दिया और मन को भावनाओं से भर दिया।

बेगाना फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया सपन जगमोहन ने।

वक्त हुआ है 1:31 और ठीक 39 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

फंटूश फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि टूटे हुए मन को दिलासा देने वाली एक सच्ची आवाज है। इस गीत के शब्द जैसे जीवन की कठिन घड़ियों में उम्मीद का हाथ थाम लेते हैं। जब मन उदास हो, रास्ते धुंधले लगने लगे और दिल भारी हो जाए तभी गीत बड़े प्यार से कहता है कि हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है।

फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया अनिल बिस्वास ने। सदाबहार गीत समय की सीमाओं से बंधे नहीं होते, बरसों बाद भी जब वो कानों में पड़ते हैं तो वही अपनापन, वही सुकून और वही एहसास फिर से ताजा हो उठते हैं। शायद यही वजह है कि कुछ गीत हमेशा दिल के सबसे करीब बने रहते हैं।

अदा फिल्म का गाना आपने सुना, तलत महमूद की आवाज में। बहजाद लखनवी ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। तलत महमूद की दर्द भरी आवाज में एक ऐसी नरमी, सादगी और गहराई थी जो सीधे दिल तक उतर जाती थी। उनकी गायकी में शोर नहीं बल्कि एहसासों की खामोश गूंज सुनाई देती है। जब वो किसी दर्द भरे गीत को अपनी मखमली आवाज में गाते हैं तो हर शब्द मानो दिल की धड़कनों का हिस्सा बन जाता है।

वक्त हुआ है 1:47 और ठीक 14 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

मोहर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

0: जब प्यार किसी से होता है फिल्म से आपने गीत सुना रफी की आवाज में। वक्त हुआ है 1:55 और ठीक 2 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है। या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

गुमा सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी ने उनका स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन

0: विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्याना, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS शिक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS शिक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के जेवर में 6,750 करोड़ रुपए की 2 बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले वर्षों में जेवर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए भारत के प्रमुख केंद्रों में से एक बनने के लिए तैयार है। परियोजनाओं के महत्व पर श्री वैष्णव ने कहा कि इन सुविधाओं में उन्नत मल्टी लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB बनाए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने बुनियादी ढांचे के परिवर्तनकारी प्रभाव पर बल देते हुए कहा कि प्रस्तावित दिल्ली लखनऊ वाराणसी पटना सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देगा। कुशीनगर जिले के अहिरौली बाजार पुलिस स्टेशन इलाके में हाटा पिपराइच रोड पर एक कार और मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 25 साल के विवेक सिंह, 31 साल की शालू और 55 साल की माधुरी इलाज के लिए मोटरसाइकिल से गोरखपुर जा रहे थे। आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। ये दुर्घटना दोपहर करीब 1:30 बजे हाटा पिपराइच रोड पर सोनबरसा पट्टन के पास हुई। विशाखापत्तनम के जिला कलेक्टर एम अभिषिक्त किशोर और शहर के पुलिस आयुक्त शंखव्रत बागची ने 30 जून को भारत की राष्ट्रपति की विशाखापत्तनम यात्रा के लिए कल सुरक्षा और प्रोटोकॉल व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों ने INS डेगा, राष्ट्रपति के यात्रा मार्गों और नोटेल के बैठक स्थल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने सभी विभागों को प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने और सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, बिजली, पेयजल, चिकित्सा सेवाओं और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अचूक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि राष्ट्रपति की यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात मार्ग में परिवर्तन, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और निगरानी सहित व्यापक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। पाकिस्तान के कराची में घनी आबादी वाले गुलिस्तान जौहर इलाके में आतंकवादियों ने पाकिस्तानी रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसमें कल 3 पैरामिलिट्री जवान मारे गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे से शुरू होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria yesterday on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Pàtrick Hermony, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both the nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermony. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Ma Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the botanical garden.

वक्त हुआ है 2:11 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ।

भ्रष्टाचार फिल्म का गाना आपने सुना अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ये रात सुरमई है, चांदनी की हल्की हल्की चादर धरती पर बिछी है और हर तरफ एक मीठी सी खामोशी पसरी हुई है। ऐसी रात में दिल अनायास ही किसी अपने को याद करने लगता है। कुछ अनकहे जज्बात, कुछ मीठी यादें और कुछ पुराने गीत सब मिलकर इस रात को और भी हसीन बना देते हैं। सच्ची तो है, सुरमई रातें अक्सर दिल की सबसे खूबसूरत कहानियां अपने साथ लेकर आती हैं।

बीबी हो तो ऐसी फिल्म से आपने गाना सुना मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जब दिल किसी पर ठहर जाता है तो लाखों चेहरों की भीड़ में भी वही एक चेहरा सबसे अलग, सबसे अपना और सबसे खास नजर आता है। शायद यही मोहब्बत की सबसे प्यारी पहचान है।

तेरी मेहरबानियां फिल्म से आपने गाना सुना। अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की आवाज में एसएच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 2:33 और ठीक 24 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

वो सात दिन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। इसे लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, माफ कीजिएगा, इसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कहते हैं प्यार सोच समझकर नहीं किया जाता, हो जाता है। यही तो इसकी सबसे खूबसूरत बात है। ये न किसी वजह का मोहताज होता है, न किसी हिसाब किताब का। कब कोई अनजाना चेहरा अपना सा लगने लगे, कब किसी की मुस्कान दिल में घर कर जाए, इसका पता ही नहीं।

गुलामी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां दो दिलों के बीच की दूरियां मिट जाती हैं, फिर धड़कनों की आवाज भी अपनी और पराई नहीं लगती।

प्यार झुकता नहीं फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। एसएच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 27 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही सुरभि सक्सेना के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR

0: AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कल इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट ने यह भी पुष्टि की दान से जुड़े मामले में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर्स डे की पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल कहा कि भारत ने पिछले 12 सालों में हेल्थ केयर के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। एक प्राइवेट मीडिया चैनल के डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव के 9वें एडिशन में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने हेल्थ पॉलिसी को लेकर नजरिया बदला है। अब सरकार सिर्फ बीमारी के इलाज के बजाय अच्छी सेहत पर और सिर्फ बीमारी को ठीक करने के बजाय पूरी हेल्थ केयर पर ध्यान दे रही है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को सबसे अहम माना गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कल मरकापुरम जिले के किस्टम सेट्टीपल्ले गांव में संजीवनी डिजिटल नर्व सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने घोषणा की कि संजीवनी डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम 15 अगस्त से पूरे राज्य में शुरू किया जाएगा, जिसमें हर नागरिक के लिए डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड की सुविधा होगी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों और सुपर स्पेशलिटी संस्थानों तक की हेल्थ केयर सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगी। राजस्व खुफिया निदेशालय ने चेन्नई पोर्ट के जरिए चीन में बने पटाखे और आतिशबाजी के सामान भारत में तस्करी करने की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अभियान के दौरान निदेशालय के अधिकारियों ने चीन से आए 2 40 फीट के कंटेनर रोके, जिनके बारे में गलत जानकारी दी गई थी। उनमें ट्रॉली बैग और स्प्रेयर हैं। बारीकी से जांच करने पर पता चला कि इन कंटेनरों में करीब 46,000 पटाखे और आतिशबाजी के सामान छिपाकर रखे गए थे, जिन्हें चालाकी से अन्य सामानों के पीछे छिपाया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria yesterday on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermony, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermony. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Ma Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with a special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani today at 11 a.m. in the morning. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website, and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO, and the Ministry of Information and Broadcasting.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है हमराही और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। चलिए आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का और आपको सुनवाते हैं कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत रफी साहब और आशा भोसले की आवाज में।

ले भी रात की तरह गुजर जाते और सुबह तेरे साथ होती, तेरे नाम होती। और ऐसे में अगर वो शक्ल, वो मासूम सी शक्ल याद आ जाए तो होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है।

इशारों इशारों में ये हुनर अपने आप ही आ जाता है जब मोहब्बत हो जाती है। और जनाब, रात जितनी गहरी होती जाती है उतनी ही तेरी यादें करीब आती जाती हैं। दिन की भीड़ में तो हम खुद को संभाल लेते हैं, मगर रात की खामोशी हर बार तेरा ही नाम पुकारती है। काश ये फासला

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है हमराही और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। सच्चा प्यार सिर्फ किसी का हाथ थामने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों, खुशियों और मुश्किलों का साथ निभाने का नाम है।

जब रिश्ते भरोसे, सम्मान और अपनापन से बनते हैं तो जिंदगी का हर सफर और भी खूबसूरत हो जाता है। तो प्यार बांटते रहिए, क्योंकि यही जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है।

हमराही सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। बहुत खूब कहा है किसी ने कि आंखों में है बसा हुआ तूफान देखना, आंखों में है बसा हुआ तूफान देखना, निकले हैं दिल से मेरे यूं अरमान देखना। भूला हूं जिसके वास्ते मैं अपने आप को, भूला हूं जिसके वास्ते मैं अपने आप को, वो भी है मेरे हाल से अनजान देखना, निकले हैं दिल से यूं मेरे अरमान देखना।

हमराही प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में कल, आज और कल फिल्म का ये गीत। चलिए सुनते हैं हमराही प्रोग्राम में सुरभि के साथ।

मेरे गीतों मेरे गजलों को रवानी दे दे, मेरे गीतों मेरी गजलों को रवानी दे दे, तू मेरी सोच को एहसास का पानी दे दे। मुद्दतों तरसा हूँ मैं तुझसे मोहब्बत के लिए, ख्वाब में आके मुझे यादें वो पुरानी दे दे। तेरी राहों में बिछा रखी हैं पलके मैंने, मेरी आँखों को मसर्रत का तू पानी दे दे। मेरे गीतों मेरी गजलों को रवानी दे दे, तू मेरी सोच को एहसास का पानी दे दे।

और इसी गाने के साथ हम राही का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 4:10 पर अरुणिमा में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमीनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमीनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमीनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कंपनियों से कहा है कि वे यूनाइटेड किंगडम की कंपनियों के साथ अपने संबंध मजबूत करें, ताकि भारत UK कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट CETA के तहत मिल रहे नए मौकों को लगातार बिजनेस ग्रोथ में बदला जा सके। उन्होंने लंदन में भारत UK पार्टनर्स इन प्रोग्रेस बिजनेस प्लीनरी की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक

0: पात्रता परीक्षा टीईटी पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बात की और निर्देश दिया कि इस रैकेट में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये कदम भिवंडी पुलिस द्वारा टीईटी परीक्षा से एक दिन पहले रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार करके एक बड़े पेपर लीक को नाकाम करने के बाद उठाया गया है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने आज होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान कल एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता है। अभियान आज फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मंत्रालय ने जानकारी दी कि 2,000 से ज्यादा चार्टर उड़ानों के जरिए 11,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को सेवाएं प्रदान की गई, जिससे चारधाम क्षेत्र में सुरक्षित, भरोसेमंद और बेहतर कनेक्टिविटी मिली। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आंधी चलने की आशंका प्रकट की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehwash Fatima. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria yesterday on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermony, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the Botanical Gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermony. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Ma Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with a special friendship between India and Seychelles, and 2 of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani today at 11 a.m. in the morning. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has urged Indian companies to strengthen engagement with their UK counterparts to translate emerging opportunities under the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) into sustained business growth. The minister said this while leading the India-UK Partners in Progress business plenary in London. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has ordered the formation of a special investigation team SIT to be headed by Thane Joint Commissioner of Police Punjab Rao Ugle to investigate the

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूं सुरभि आपके साथ। नमस्कार। जिंदगी का हर नया कदम अपने साथ नई उम्मीदें, नई खुशियां लेकर आता है। हर शुरुआत खास होती है क्योंकि वहीं हमें नए अनुभव, नई मंजिलों तक पहुंचाने का रास्ता मिलता है। इसीलिए डर को पीछे छोड़िए, दिल खोलकर आगे बढ़ते रहिए और हर पल को मुस्कुराकर अपनाइए, क्योंकि खूबसूरत सफर हमेशा पहले कदम से ही शुरू होता है।

ये दुनिया उसी की होती है जो दिल में प्यार, चेहरे पर मुस्कुराहट और इरादों में सच्चाई रखता है। दौलत और शोहरत से ज़्यादा कीमती होते हैं अच्छे रिश्ते और नेक कर्म। इसीलिए हर दिन किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही एक इंसान की बड़ी पहचान है। दुख कितना भी हो, कितना बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन दुख को आप धीरे धीरे चीज़ों के साथ बदल कर खुशियाँ पा सकते हैं। तो चलिए गीतों का सहारा भी लेते हैं, जब दिल उदास हो, मन उदास हो, सुनते हैं ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में। फिल्म है कश्मीर की गली।

सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अरुणिमा और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि भर चुके जख्मों को अब फिर न खरोंचा जाए, भर चुके जख्मों को अब फिर न खरोंचा जाए, इस नए दौर में कुछ हट के भी सोचा जाए। अपनी आंखों को रखो पुश्त की जानिब अपने, जो करे वार उसी वक्त दबोचा जाए, इस नए दौर में कुछ हट के भी सोचा जाए।

अभी भी एक उम्र पे जीने का न अंदाज आया, अभी भी एक उम्र पे जीने का न अंदाज आया, जिंदगी छोड़ दे पीछा मेरा मैं बाज आया। पास अपने जो नया कोई फसून साज आया, हो रहे उसके हमें याद तेरा नाज आया, याद तेरा नाज आया।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ अरुणिमा। आज रात जरा प्यार से बातें कर ले, आज रात जरा प्यार से बातें कर ले, कल तेरा शहर मुझे छोड़ के जाना होगा। मेरी किस्मत में तेरे जलवों की बरसात नहीं, तो अगर मुझसे खफा है तो कोई बात नहीं। याद में तेरी कल अश्क बहाना होगा, कल तेरा शहर भी छोड़ के जाना होगा। आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले।

और देखिए चलते चलते अपने अंजाम की तरफ आ ही चुके हैं। अरुणिमा धीरे धीरे अपने अंजाम की तरफ है। तो चलते चलते आपको सुनवाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत हेमंता की आवाज़ में, फिल्म है 16 साल। लेकिन उससे पहले किसी ने बहुत खूब कहा है कि आईने का साथ प्यारा था कभी, आईने का साथ प्यारा था कभी, एक चेहरे पर गुजारा था कभी। आज कहते हैं जिसको ना खुदा, हमने उसको पार उतारा था कभी। आईने का साथ प्यारा था कभी, एक चेहरे पर गुजारा था कभी। चलिए सुनते हैं 16 साल फिल्म का ये गीत हेमंता की आवाज़ में।

और इसी गाने के साथ अरुणिमा का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत। 5:10 पर भोर सुहानी में एक बार फिर होगी हमारी मुलाकात। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हमनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हमनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हमनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हमनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कंपनियों से कहा है कि वे ब्रिटेन की कंपनियों के साथ अपने संबंध मजबूत करें, ताकि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता के तहत मिल रहे नए अवसरों को लगातार बिजनेस ग्रोथ में बदला जा सके। उन्होंने लंदन में भारत ब्रिटेन व्यापार सत्र की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में दोनों देशों के प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूत करने के लिए CETA का एक क्रांतिकारी फ्रेमवर्क के तौर पर स्वागत किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और निर्देश दिया कि इस रैकेट में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये कदम भिवंडी पुलिस द्वारा TET परीक्षा से एक दिन पहले रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार करके एक बड़े पेपर लीक को नाकाम

0: करने के बाद उठाया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव शॉ और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 सालों में स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। देश सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा के बड़े लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है ताकि हर नागरिक को आसानी से और सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। राज्य मंत्री ने इसका ब्यौरा दिया। एक प्राइवेट मीडिया चैनल में डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव के 9वें संस्करण में उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य योजना को लेकर नजरिया बदला है। अरुणाचल प्रदेश में केई पानीयूर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान कल एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले के उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान आज फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन केमिन मार्ग अब भी बंद है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गई। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermony, today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. We have a report.
2: Today, Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of Indian diaspora. Later, Prime Minister Modi will participate in the National Day celebration at Roche Kemen. The ministry said that a contingent of the Indian Defence Forces, along with 2 Indian Navy ships, will also take part in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi is on a 3-day visit to Seychelles to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. This visit reaffirms the strong and enduring friendship between India and Seychelles and strengthens the shared commitment of both nations to enhance bilateral ties across all sectors. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Modi reached Victoria yesterday on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermony, at the airport. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has ordered the formation of a special investigation team, SIT, to be headed by Thane Joint Commissioner of Police Punjab Rao Ugle to investigate the Maharashtra Teacher Eligibility Test TET paper leak case. The move comes after Bhiwandi police foiled a major paper leak a day before the scheduled TET examination by arresting 3 alleged members of the racket. Following the incident, the Maharashtra State Council of Examination postponed today's TET examination. A revised date for the test will be announced later. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has urged Indian companies to strengthen engagement with their UK counterparts to translate emerging opportunities under the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA into sustained business growth. The minister said this while leading the India-UK Partners in Progress business plenary in London. The US military said it struck multiple targets in Iran at the direction of President Donald Trump, continuing a string of attacks that have shaken the war's uneasy ceasefire. In a post on social media, US Central Command said that American military aircraft targeted Iranian military surveillance infrastructure, communication systems, air defense sites, drone storage facilities, and mine layer.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है भोर सुहानी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। नमस्कार। सुबह का समय हमें बहुत ही खूबसूरत संदेश देता है कि हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है। बीते हुए कल की चिंताओं को पीछे छोड़िए और आज से पूरे उत्साह के साथ उठिए और आज के दिन को अपनाइए। जैसे हर सुबह नई रोशनी लेकर आती है, वैसे ही जिंदगी भी हर दिन आपको आगे बढ़ने के लिए एक नया अवसर देती है।

भोर सुहानी आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। जिंदगी में सुख और दुख दो मेहमान की तरह हैं, क्योंकि कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता। हर परिस्थिति में जो मुस्कुराना सीख लेता है, आगे बढ़ना सीख लेता है, वही इंसान जीवन का असली विजेता होता है। तो हर पल को स्वीकार कीजिए, क्योंकि हर पल, हर अनुभव आपको पहले से अधिक मजबूत और समझदार बनाता है और आपके दिल का आलम भी ठीक रखता है।

सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि हर दिन छोटी छोटी कोशिशों से बनती है। जिंदगी के रास्तों में चुनौतियां आएंगी, लेकिन वही चुनौतियां आपको मजबूत बनाएंगी। इसीलिए हमें और आपको सभी को खुद पर भरोसा रखना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए और हार तो कभी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि लगातार कोशिश ही एक दिन हम सबकी, आपकी, मेरी, सबकी एक बहुत बड़ी सफलता बनकर सामने आती है।